0: पैसे भी मुक गए, दारू भी मुक गई, पेपर भी मुक गए।
1: हैं?
0: सपली आ गई।
1: एग्जाम जो?
0: की रह गया यार जल्दी?
1: भाई पिंड जान तो पहला ना पार्टी ता बांधी है।
2: बांधी ता है यार। बर्थडे वाला जुगाड़ करके देखी?
3: भाई पिछले महीने ता मना के हटे हैं जी बर्थडे है जी।
4: ओए वो ता होर सी।
3: हैं?
4: ले ए हो रे। ओ खड़ जो मैसेज करना है। हजे ना मैसेज करना है। लाटरी पाती निकले ही ता देख ली मैं माड़ा जा।
0: ओ भाई आ उंगल नी। आहा

0: 1230.ca.
1: नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा लेके आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश ते डांस। जिया के हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उहां के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांसी कोला जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ए है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वह है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है वह स्पेशली किया जाता है देवते की स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। तो कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंगी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये कुड़ियाँ भी करुट दे नैट पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिदे जिन्हें भी भाई ने वो सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टेप करते हुए बड़े हल्के हल्के मिठे मिठे स्टेप करते ने ए ते स्टेप करते करते जेड़ा ये डांस का रिदम होंदा वो कन्ने कन्ने इनकी जेड़ी लय है वो बढ़ती ते घटती है। ये डांस किया जाता है एक स्पेशल तरह के जो डोगरी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ने उनके कन्ने ते कन्ने के कन्ने बांसुरी दी ते ड्रम दी आवाज़ ढोल दी आवाज़ भी बिच शामिल की जाती है। बड़ा ही अलग तरह का कुड डांस का म्यूजिक होंगे जो कन्ने ही सुनेंगे बड़ा अच्छा लगता है ते इदे पर बड़ी मिठी मिठी डांस की लय बनती है। तो सुनो अगला गीत।

तो सुना दे दुग्गा प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ए जियां कि मैं तुसी दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्थे तुस देख ही सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस हुंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपरे कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर हुंदी है वो चिट्टे रंग दी हुंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ए ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एको ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: present, drop our sons, brothers, habits, and holy beasts, bullies, only hearts, sincere call.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम 416-917-7763 416-917-7763

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां

0: Brampton. या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देखे गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।

0: राजे दे कर सोने दे रब ने संजोग मिलाए ने।
1: आ सुन लिया अखीर ते गाने दा नचोड़ कढ़ता अगलिया ने, आ सुनो ध्यान नाल।

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव ट्रैवलर शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं कि तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के करण जी और सुखी निजू साहब वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करनगे और लेटर जिहड़ी खबरां होणगियां उहदे नाल भी सांझ पाई जाएगी। ऑलराइट, काफी सारियां खबरां ने, लेकिन सब तो पहला छतरी छत दा रिपोर्ट हाजिर है। अज जरा जिहड़ा तापमान है वह भी दस दें, लेकिन सूरज सिंह 5:36 ते आया ते शाम नूं 8:57 ते चले जाना। मामा चांसियों सवेरे सवेरे 1:35 ते आया ते 1:32 ते दुपहरे चले जाना। अज दा तापमान 26 डिग्री, सारा दिन सूरज चमकेगा। कल नूं 27 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड थंडरस्टॉर्म झखड़ झोले आउणगे। बुधवार नूं भी झखड़ झोले ते थंडरस्टॉर्म वगैरह मीह आ रहा है। तापमान 27 डिग्री, थर्सडे नूं 28 डिग्री, सेम थिंग, ਚੱਖੜ ਚੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਆਏਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੇਗੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਆਉਣਗੇ, ਚੱਖੜ ਚੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੇਗੀ। ਤਾਪਮਾਨ 28 ਡਿਗਰੀ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichu, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन, इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा, दाल, चावल, दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
5: వేమలా విలేజ్ లా విలేజ్ పడది పియొచ్చ జంట పడదా, వేమలా విలేజ్ లా విలేజ్, వేమలా విలేజ్ లా విలేజ్ పడది। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lain layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary wirk nu milo
3: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi vi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ते डरावरी सूट कर दियां जट्टां नु
8: अजणे खणे दे वासी गल नहीं है

क्या बात है, क्या चाल है सब दे। उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नु। शाम दे विच जुड़ चुके हैं थोड़े नाल एक बार फिर प्रोग्राम पंजाबी लहरां दा, कि ठीक 9 बजे तक थोड़ियां साडियां गल्लां बातां होणगियां। लाउने आ रौनकां, सजाउने आ अज दी शाम नु, ते हैप्पी मंडे भाई।

0: क्या बात है, तू लगे वोग दा कवर। वोग दा कवर अपने किन्ने इंडियन बड़े ने वैसे। इंडियन कोई पंजाबी है गया? एनी पंजाबीज ऑन वोग कवर? देखते हैं वैसे यार, क्योंकि वोग दा कवर बनना बड़ी एक वड्डी गल है। एंड पंजाबी जे कोई बने ने, अच्छा कहिंदे कि एक तां हरमनप्रीत कौर अते इंडियन वेमेन दे क्रिकेट स्टार बने ने वोग दा कवर। वाह भी वाह। एक प्रिंसेस करम रानी सीता देवी कपूरथला तो, नोन इन द 1930s एज पर्ल ऑफ इंडिया। ओ भले ते दिलजीत हुणे, ओ भले क्या बात है दिलजीत हुणे, वोग इंडिया दा डिजिटल आई थिंक ओदी कवरेज है। मैं वैसे देख रहा सी जे कोई वोग मेन दा, बट नहीं फिर भी वड्डी गल है यार, वोग डिजिटल इंडिया दा कवर दिलजीत हुणे बने। दिलजीत ने भी फट्टे चक्के पूरे है, क्या बात है। How big is Vogue magazine? ये भी पता कर लिए। So Vogue magazine, मैं क्या how big is? इन्होंने मैंने 10 by 10.8 inch। मैं ये नहीं पूछ रहा वी जिहड़ी मैगजीन है उसकी साइज है। कहिंदे कि इट्स द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल ते मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैशन मैगजीन पूरी दुनिया च। 25 तो वध इंटरनेशनल एडिशन ने, क्या बात है। सो जिहड़े फैन ने फैशन दे उन्होंने लई बड़ी वड्डी मैगजीन है। 130 साल की लैगसी है वोग की। वाह भी वाह, क्या बात है, बड़ी यार वड्डी गल है। ते वड्डियां चार एडिशन ने, अमेरिकन वोग, ब्रिटिश वोग, वोग फ्रांस ते वोग इटालिया। सो हैवी वेट है फैशन इंडस्ट्री की वोग। सो जे कुड़ी बन जाती है वोग का कवर, फिर वाकई कुड़ी च कोई ना कोई गुण है। सो 905-673-3337 अपना नंबर है। बियॉन्ड आईवर सारे याद रखो, एनक चाहिए हंबर वेस्ट ते गोरवे, आई डॉक्टर भी अवेलेबल ने बियॉन्ड आईवर। रोमी बाई जी कॉल कर लो 905-793-3937 बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड आईवर की टीम संपर्क करो। तो आई ती एग्जाम कराने हैं, सनग्लासिस चाहिए ने थोनों, या प्रिस्क्रिप्शन की एनक चाहिए तो 905-793-3937 बियॉन्ड आईवर की टीम थोड़े लिए बिल्कुल हाजिर है। मनजीत भी साढ़े नाल ने अपलायंस जंक्शन तो लिए कुछ एक मनजीत तो डीला। मनजीत वेलकम।
1: थैंक यू सो मच नवीत, प्रोग्राम सुन रहे सारे स्रोतों मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। इस वीक दी स्पेशल डील्स ने, सब तो पहले जिन्हें भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सुन रहे हैं या तुसी अपने घर दे लई पांच दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो देख रहे हो, सो इहदे विच 36 इंच वाइड दा फ्रेंच डोर डिजाइन दा फुल साइज फ्रिज है, ग्लास टॉप वाला इलेक्ट्रिक स्टोव है, टॉल टप दी डिशवॉशर है, विद फ्रंट लोड दा स्टेनलेस स्टील कलर दा वॉशर ते ड्रायर दा पेयर है। $6500 दी वैल्यू दे पांच प्रीमियम अपलायंसेस दा कॉम्बो है, जिहड़ा कि सिर्फ $39.99 दे विच पांच दे पांच अपलायंसेस दा सेट तुसी स्टेनलेस स्टील दा अपने घर दे लई लगा सकदे आ। जिन्ने भी क्लाइंट इस टाइम अपने घर दे लई बिल्टन अपलायंसेस च डील देख रहे ने, तां बिल्टन दा वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड जेनियर दे उपर एक्सक्लूसिव 20% दा डिस्काउंट इस वीक असी अपलायंस जंक्शन ते लैके दे रहे हैं। ट्रेन स्टाफ दी टीम नूं मिलो, स्टोर ते विजिट करो ते असी अपना 10-15% डिस्काउंट एड ऑन करवावांगे उस 20% डिस्काउंट दे विच। लास्ट दे विच जिन्ने भी क्लाइंट इस टाइम अपने घर दे लई वॉशर ते ड्रायर दे विच डील देख रहे ने, फ्रंट लोड दा अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी दा स्टेनलेस स्टील कलर दा वॉशर ते ड्रायर दा पेयर है तो घटा के सिर्फ $14.99 च इस वीक।
0: सॉरी किन्ने तो घटा के, थोड़ी आवाज कटी गई सी
1: ਨਵੀਂ $2200 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ $14.99 ਚ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਦਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰ ਤੇ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਐਂਡ ਕਲਾਰਕ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ ਇਜ 905-450-0054 905-450-0054 ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਨਵੀਨ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 905-450-0054 ਮਨਜੀਤ, ਅਪਲਾਇੰਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।
2: This is AM 530, CHLO AM, an Evanoff communication station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
3: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
0: ਲਓ ਮੌਕਾ। ਮੌਕਾ HST ਰੀਬੇਟਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਅਤੇ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਸੈਲਿੰਗ ਨਾਓ ਸਿਰਫ $649,990 ਤੋਂ ਮਿਲਟਨ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਵਿਟਬੀ ਸੀਟਨ ਅਤੇ ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-840-7135 ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ 416-450-6680-416-450-6680 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ sales@paradisedevelopments.com ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ paradisedevelopments.com
4: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਸੰਗੀਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਟ bridgemohan.com
0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 4 6551984

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: क्या बात है राजधानी स्वीट्स, राजधानी स्वीट्स डॉट सी ए भी विजिट तुसी कर सकते हो। एक ना हमेशा बड़े लोग पुछदे नवी यार किसे वधिया अच्छे मकैनिक दा नंबर दो। रॉयल ऑटो सेंटर दे साडे राज भाजी ने ऊबर या लिफ्ट दी कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन है, इंजन ट्रांसमिशन दा कोई पंगा पै गया, स्टील्स अते मेलनी ते रॉयल ऑटो सेंटर अफोर्डेबल रिलायबल बड़ी ट्रस्टवर्दी टीम है। ते नंबर है 9057991478, 9057991478। रॉयल ऑटो सेंटर दे राज बाजी दे नाल गलबात करो ते थोड़े लिए बिल्कुल अवेलेबल हाजिर ने, बहुत ही खास खास एक्सपर्टीज लैके। ते नाल मेन गल ही होंदी यार कि बंदा ट्रस्टवर्दी होवे, गड्डी ते कोई काम कर रहा ता यही सानू मेन फिकर होंदा। साढ़े नाल सुखपाजी जुड़े एक बार फिर, ग्रैंड होम फर्नीचर एयरपोर्ट क्वीन, क्वीन गेटवे 294 वॉकर ड्राइव। पहली बारी फर्नीचर की दुनिया सुनिया, बाय वन गेट वन फ्री है, एक बैड सैट लो दूजा बैड सैट फ्री। सो सुखपा जी बड़ी यार कमाल की गल है। सो जे सपोज करो अपने चार बैडरूम ने घर च, सारे लिए बैड सैट चाहिए, सिर्फ दो बैड सैट लिए पे करो तो चार मिलने।
2: बिल्कुल बिल्कुल नवी भाई जी, ये पहली बारी होने जा रहा फर्नीचर इंडस्ट्री के बेचे, बाय वन गेट वन फ्री। पर तुहानू आके नाम लेना पैना, पंजाबी लहरा सुन के आए हैं ते फिर तुहानू सारियां डीलां बाय मिलनियां। कोई भी तुसी दो बेडरूम सेट बाय करो, दो बेडरूम सेट फ्री, दस बेडरूम सेट बाय करो, दस बेडरूम सेट फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। कोई भी तुसी रिकलाइनर सोफा सेट लेना, रिकलाइनर सोफा सेट दे नाल सोफा सेट फ्री, सोफा कम बेड दे नाल सोफा कम बेड फ्री, कॉफी टेबल नाल कॉफी टेबल फ्री, इवन सिंगल
1: ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ।